नो दावाय सोना रंग धन भानवार गान दियो के चुनी कानो दावाय सोना रंग धन भानवार चलो चलो दीघे सागरे सहस पान्ना रंग दियो किछु अग्रणी रोदे माठे माठे सोना बान।